0: Sound check. City FM, studio time.
1: I'm Jake Kusatma.
2: New Star Digital Color Lab, तथा बड़ा माय ऑफसेट प्रेस, सोलु दुतुन नगर पालिका 5,

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: अभियान चेक Sony FM, studio time.
4: It's 7 a.m. Behind Kusad Bajo.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: านุขันรังเขาพระใจใส่ปานิ
1: युचार पर्व में यूरोपेंस प्रस्तुत करते हैं रंगीन सखर बरसीन से उपहार रु 50,000 को यूरोपेंस को खरीद वापस दो लकी ड्रॉ कूपन अन्य पाउंड हो स्कीन बचो एसी एक चाल डबल डोर फ्रीज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक अन्य बम्पर प्राइस में पाउंड हो एक जोड़ी कुलाड़ी बाली टूल यूरोपेंस घर मात्र ही ना रंगाउन हो सपना बनी
2: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का संदर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

सोलो खुंगो कानून कैंपस को एनएल गुना भरना संबंधी इस सोलो खुंगो कानून कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083 84 को लागी 3 वर्ष एनएल बी प्रथम वर्ष को भरना खुले को हुँदा कुनै पनि विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका इच्छुक व्यक्तिहरूले निम्न अनुसार भर्ना हुने हुना जानकारी गराइन्छ। भर्ना कार्यक्रमको निमित्त भर्नाका लागि आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गतेदेखि भदौ 30 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते, नतिजा प्रकाशन असोज 11 गते, भर्ना म्याथ असोज 12 गतेदेखि असोज 25 गतेसम्म, कक्षा सञ्चालन कार्तिक 10 गतेदेखि, रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने म्याथ कार्तिक 30 गतेसम्म। सब जानकारीका लागि 9851001056 9841828445 र 9842847750 गीता घिमिरे क्याम्पस प्रमुख सोलुखुम्बु।

संस्कार और संस्कृति की वो मान्यता सबने बेसी सो किया आजकल आत्मीयता यति कार्पेट नै हो विगत तीन दशकदेखिको सुदूर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनुहोला यति कार्पेट कार्पेटको शहनशाह

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्द नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
2: समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
1: राष्ट्रको शान किसान
2: अ कम्प्लिट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: इट्स 4 PM
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Solu FM Studio Time
2: It's 5 PM Saatko 5 baje
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: AWR नेपाल मेसुर जो मार्गदर्शन रेडियोला दसैं दिले जय मसीह। ती निजी क्यों मोगोई डाकपी शिन क्यूमुतांग दुखपी परला संग निजी के त्यांदो क्लियामो के नी देनी लियामो के नी द्वाबीन।
1: नशे लुंसा देती होला तंजी दिले तमा जैमिशी होता आनिंगा दे लुंसा देती परला कौनसे की सुंग लोकुलाम जिमार का दर्शन रेडियो ला वानिप सोंग नशे आरे कौनसे की सुंग दे सोई कौनसे की चाव मपरिंग क्रिश्चियन दे नरे निमित्तं घन लागा जिसनां तमा साता नुगो बलमा पर जीवी क्रिश्चियन दे तेरी की सोई कौनसे की मिला मा पर जीवी तमा जिला सोई कौनसे की मा पर सी जी सोई कौनसे की मा पर ती मती की थेंगा अतर तंगा दिन नवे जी दुख्ने चीनी दिन वे की ए ने देवाजना जुनंगो सोई कौनसे थराई मिंचेगा जुंसिन थराई जलगम दुखुक्सिन थराई नासन देवाजना दोके जिजमोलिंगला दुखुक्सिन निंगला आरिंग निरे निमे रंगी समनंग देजिन निरे मतकबा लागाते वाला श्या जानंग देजिन सुक्यानी निरे जिन निरम खरे मतकवते वाला श्यावा बिनमे निरला परचला शेर माचिसा पमलो मेलक मनु सुतो नंग देजिन चिरसिन जलखम मलाम स्वांग दि नरीरांग सरजराइन आमेन भूक्याने दासा भूमिलाम बाइबल लोगो पढ़ला दी सही कौनसे के मोपते जीवे तमा मोपते कहाँ इंसुल कर लाइन चिले ऐसे की दाखुला मोपचिरोलाम ने बिंदु इंसिसिन तमा सही कौनसे के मोपला चाहना हो दिगंग बाते तेरे लाम कुतो कुतो घक्षे तमा जेंदो कहाँ इंसिने सोलुप लागा जीवे नई जोकन्जे दाखवी सही कौनसे के मोपला चाहे चोलने जोगो की थगला दाखवे जयाजन्जे प्रभिजी मुलाम सु कहने मोपर तमा तम्ये जीरोक्षे ने हाँ कोई जी थोड़ा लेम चाहे निमचों को जुए धक्के मो पर लाम जिम्मा पर मांग सिनां मांग हक पाचीवे उतना लड़ाई की सेंचीवे जिम्मा पर वो तबुंगे जी तमां कोई कौन जगे मो पर की कर लाम धक्के ना समझे धासाई की दोगे जने तम ने जीवे धक्के की लाभ सुलो थलमी की तम कहाँ इंसिसिन ऐसे की धक्के लाम कोई की लोमती हुई जी भंगो शुरू की तम दलाम जिम्मा पर की कर ला सुन ना सुन पे रेत तेल की सीजा सुन ये चोई कौन जो युवा ने की फरेलो आमते वाला मोपर किरो लाम ने बिन्दु दोके नियमा से मोपर किरो लाम ने बिन्दु नंगे जी जीताम लुगा चूची की चीख लगने जी वे जीतो को मोपर की जोकता इन धाकुले हो दिए खर्च है मोती की सेब चुप लाम नियमा जने सेम लाम जीरुप लाम धोइन होए यह धाकुली की मलो चोई कौन जो की मोपर तमा गाड़ी गुड़ की नारती वाला थोनी हुआ है मोपर की कोला थल में की खाक्ष है ताम खाक्ष है सिलुपते जिजी जोले में लेनी आने डाकु कहाँ की वासीन सिलुप ताम भूमि लाम जी ताम दे कुतुब में हिंजू खेला जी रेडियो तमा चुके सिताम देवा न्याजी क्या ताम देवा न्यामा जनी न्यानी हो जो जी उम्मतुक जी रुना तमारा रोनी जो को सौपला खेला जी वन तमा कंप्यूटर न्यानी तमा ताम दाते वाते नहीं हो जो न्याय चुरुना गोइंग जीरो ताम खेला जी न्यानी ना हो जो दिनाला खेला जी सुरुप सुरुप ताम जोवा हो जो तमा खेला जी जिला न्यानी ना हो तमा कह जी जी ताम भाग से चुनी हो तमा जिम्मो परसंग चुकर जो बला कौन जगह दाखवे मुलाम ताम चांदन गुवे कोई की खोरा सुन जंगे भाई बन्ने से दाखवे मुलाम गुनी बिंदन गुवे तमान दाख भी की दिलाम सुकैना सुकै जाने से मला लिंगीवे तमान इसी न्यानी लामी दाखवे ताम ही ताम दतेर जीवे तमा फार्शुर नीन दी की चाता बगर जीवे मो पर दे लोमा जब की दासाई इन दी ऐसे की लोमा जब की दासाई साइन तमान जी गोरा दोगे जाने ताम नींदु सिनांग गुतुरान तामीन तमा दी की तेनो दी सी घोषिन शार की फैन सुकुप देवी जे तेनो की सी घोषिन देवी जी ना समलाम नम जे हर जी देवी मलाम चिग्रा जब छलो बलाम तमा ये मताम निशुर छुरुला कुदु जो कुबलाम तमा छला जी ना समलाम नुम्बा थम जे की ताम निशुर कुदु जवाबला तमाम चेंगे जब जी थकलाम जाओ लाखाइन क्रिश्चियन लोगों जी चोई कौन जगी मुलाम जाओ तामीन तमा जिला मोपरीन जी तिगिरे जाओ मोवा तमा कौन जगी जीवा कौन जगा चीनी तमाम तम्बी की ना समझी मुलाम धक्की की मिटी मुलाम तम ये चाव दोगा गोजीवे तमा दुक्यानी ऐसी की धक पलाम चोई कौन जगी मोपर दिन नंगो पड़लाम कौन जगी मुला चुक्याने मोपर किलो सिरुप करलाम धकुला बंगी ताम जीवा लाभ ने भिंजांग नांसुंग दिदी छतें तेनी तेरे दोगे इन दिदाकी कौन चोला सुकेनी मोबर किलो सिलोर तमा छेदन तिरुग लांग यानी मिंदुर तामिन तमा भूमि किसान जुए जिम्मोपर ला खड़े मोबर जोनी तमा दागबी की कौन जगी मुला तमी किरुला चुंचरा क्या हुई इंसिसिन बीजे हुतना मिन दागबी कोई की मुला मांग ले मैं क्या निशान तिला ताम किसी के बे सुकेनी नातां दा खड़े मुला बी ताम किनी वे दागबी की चोई कौन जगी मोपर ला कौन जग पबी मुला ताम किवे दागबी मुला कौन जग सुन जु वे सी कौन जग तमा निर सुन जु वे सिलो ताम ने ले मैं जने ना संतों ना उसी चिला दागबो ये सुधर सेंगे थुजी मुला संग सिला दमी मिजी वे ने मुना वे कृष्ण दागबो मुला जुना वे खोई दागबो मोपर किलो लाभ नि भी ना सुन सुकेनी खो दागबी मुला दागबी की गोमला नानी नंगु पला खोई मोपर क्या नंगु दे जीजे हुतना क्या ने घंसा मैं वो दीवे तेरे भी तू की ऐसे की मुला तम ने क्या सुन सिला सिंह खो खड़े की नाकरा दोगे किन क्या जुना वे तयान सिला सिंह दागबी मुला दागबी जुलरन दोगे ऐसे दागबी मुला फिर नंगु वे सुकेनी दागबी खो लाम भूसने मोपर की तम कौन देखी मेरा सुनती वा केजी सेंगी दिनी तामीन पापा पुजुन तमा थुजेंगे थाना की ताम दिन है चुरुंगलांग तुम्हारे जैसे नहीं दुनिया ताम दे कहाँ इंसिसिन भाई बहन आला चीनी जंग हो तो कोनी के संगे होता ना जाने मिंसिसिन चिला सिंह खराजी दिला नेमा जने हाँ कोसुं सिंह खराजी तरंग वाला मावजीवे तमा दे ताम दे अंगा ठीक बैगी चुके सांग जाने खोरे मामला तमा पापा ला नेमा जाने हाँ कोगी तब के मिजी मां मिजी दोगाइन दाकुदे जुलाना दोगे तमा दाकुदे दाकुदी किसा लेंसिन दुकाव दिखवा चिरो निमाला दाकु माव ऐके दाकुदी कौन जो सुन के नाकला लेमा जना हाँ कुतुब क्यों बें तमा लो नीताम सिरोबला दुकाव मां लाख पाव ऐके तमा बाय बाय की दिखी करला कौन जो पापा उसे तमा थोचेंगे तमा लो निमा सुंदर चिकांग जुनी नाव ऐसी लेमा जना लाम ने भिन्न गुवे दुकाई इंसिन खेला के सुला मोपर क्या इन मैं मना हुए तम कौन जो पापा ला मोपर चिरो ये सुखी दाकुला नाथ जी मिन्न गुवे तम खोई की सुन नांग सुन न्याचा जिन मिशियां सुसंग पपीता उमुतुवे तम तुगरा इंसिन जो पर लसंग ला न्यो जुजे दाकुजी मंगशो मोपर दाकुजी कौन जो पापा ला रंग चिवे चिला सिंह दाकुजी खोई की पुजु घूमती वाला दाकु खोया दोगे जिन सेम लाला हुए दाकुजी खोई की त्यासुरांग तम दिन्ये नि हुए तम दाकु खोई की त्यासुरांग जाने तसे हक सुनने हुए खोतरा गोटों जाने जुना हुए तम दाकु की हक ताई लाका जुन मुझे खोला जुना हुए खोई की दाकुला जुना सुन दाकुला दाकु दिख पने सुर मुलुम नार्जे खोई की बिना सुन तुकने दाकु मोपर कौन जो पबल रंग जाने सुमुबला मुथुक के बे कांता दाकु ये सुला चेंगे थुला मोपर की थुक के बे इन्हें हुदरा ये मोपर की थुक के बे न्याय थुक के बे तमचिला मुथुक बे चेंगे थुला मोपर की सा लेन ले मुसी का तेरु की थोकला चेंगे थुजी मुला ताम की सा तमा लेन ले मुसी का तेरु की थोकला न्याय ये सुमुबला थुजी वंग तेरी थोकला लेन ले तेरु की थोकला तमा ले की मिजला मिजे चंगु की थोकला चेंगे थुजी मुला ताम की सा तमा ये सुलो मोपर की सा तमा खोई की थोकला खोई की दाग मुला जानंगु तमजी की थोकला खोला थुजे बिना जितेरे ताम ले में जानी वे तमा लो चोई कौन जो की मोपर भागी कौन जो पापा लो मोपर जीवे तमा दाग पीछे खोला मोपर चिरो बला कुदरा पर चे मोपर जानी जीवे तमा जी मोपर ला बंगे ताम तेरा जानी जीवे तमा दाग पर ले में जानी डॉबला इकले जीवे कोला ना संतोंगु ले जीवे झेला ले गो चिंदो वे ये सुखे मति टुकी तर तला गोनी भीन जीवे नारंगा ने से थल नी जीवे तमा चो बला चिरो मोपर जीवे तमा ची पर ला सेम मेरक बात हुआ दोके जानी मारुसा चिला सीन चुवा हाँ नंगला तमा नंगीची ब्लडेने नीतियुजी तुमसीसीने मोबर किलोबला गाजुवीं उतना मैं चिलंगला सीन चेजे क्या करने निश्चिन्न होता तमा चेजे कहाँ नेसों तमा नीतियु कौनजोग नेसोर नीतम सिरुप्ते जिगान क्या काइन तमा तियुजी कौनजोगला चेन किलोबला दोइना मैं तमा मती के नाथ टुगला जो पला चुरुंग मोपर किवे खामे नाला शून्य गोचे ने तमा दागबी की थोंग मुतबो कौन जो पपाला मोपर किसा तमा थोंग मुतु खेला कौन जो पबीजे चुरुंगला क्या का भिन्न नहीं तो तमा सीसा मोथोंगो दासला भिन्नी मोपर किसा तमा मती के नाथ दिनला तमा चुनो जो पला मोपर किवे मोपर निजी निजो का जाने मोपर माजिसा चिला से भूमि सीखला मोपर कैसे कौन जगह थो नंगुसिनी ये सिरुप तामिन तमा कौन जला छा वाजी दागबी की लोंगु सुनंग गोमला दागबी की खाक सेचुवां कांग वैसने कौन जल ले मैं जनी छा वाई मोपर तेरे जाने निन कांग ले मिजवा जगो पड़ला कोला युनी मोपर चिवे तमा चिवी की मोपर दे चिवी की कांग लागा चिवे किसिनम गमना म पर किलो परला जुई म पर चुम जने थोकी वे तमा छरे के खरा तमला तमा तमले ओ तुम निजवाला नेम जने मसे तुम की थकला सिकाने बिन होय तिमी की फरे के सेवला फरे के रक्त म डबला बिन ना सुन बिताम जे उदुना दागु फरे की तामिन तमा दागु कोन जो मुला दुख ताम किरु ताम की सितांद्रा मिन बिताम्रे से जमीन मिन तमा कोन जो सेम जांगबो कोन जो जुना वे कोन जो छासे छिया तमा छिंत्रो जा जुना वे सोई कोन जो के बुदुके तामद्रा मिन सोई कोन जो की खेलेमला तमजी जुकुमला छलिय वे तमा ती तमजी जे कोई से येशु कृष्ण सो खरेगे मुला जांगनांग नि जुकुमला नांग वे तुकाने दागु नरे सोई कोन जो मुला मोपर की बो येशु ने लाभ नि तेरी वे खोते दागु कोन जो जुना वे तमा खोई की जीव डबला सेवई की ओम दिनांग नि खोई की सेमला ला नांग सुंग खोई की दागु दिक्वा देवा ताची नांग सुंग तमा दागु की थोकला रोकतम बिन नांग सुंग तमा दितिरी ताम खरेगे थोला खेंचरो उसिन खरेगे थोला कोन जो के तमजी नो मांग में तमा जो जीव वासिने हाको लागा जिसा भुक्यानी खोई की चुरुंगला नमसा नाम होंडो निजी केरुग नो नंगुवे युवा नची जिंगी सुवे तमा जो जी खो अला खरेसेम ललावे तमा खोई की मिला मुआचावे खोई की तिवला कोन जो की जीव डॉगों भिन नंगवे युवा की खरा दिनासम तमा गाजवे तमा गई जोगन जी जो येशु ख्रीष्ट जीवे तमा कोन जो खेला पापा सीखी सिकंदर जीवे कोई की क्यों ना तुमसे जानना गुवी चिरस दिन कोई की क्यों ना होकना गुवी तू क्या नहीं क्यों ख्रीष्ट ला वह क्या नहीं कौन जब भी देखे बा नसे आरी यू कौन जगह सुन दे दो तरह इन्हो नुकसान दबो ताऊंगु शकला दूरन क्या नहीं दिले दियो ला कौन जो के ले आरा उन्हें सुरुब ला दबो छेदो ब्ला का किधर ना कुछ से ना

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sign check. Solu FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start the call 7 button.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
3: Wherever you are, stay connected.
4: तपाईं उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ। अब सुरु हुन्छ कार्यक्रम देश परदेशको पुनः प्रसारण।